0: Ihr hört Fresh FM, das Gemeinschaftsradio Neuseelands Südinsel, mit Inhalten von, für und über die Menschen unserer Region. You're listening to Fresh FM, Top of the South Community Access Radio, producing content made by, for and about the people in our region. Es ist 13 Uhr. It's 1 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: This is Fresh FM, Te Reo Irirangi o Te Tau Ihu o Te Waka a Māui. The opinions and beliefs expressed by our announcers and program makers are not necessarily the opinions or beliefs of Fresh FM, your community access radio station. If you want to share your own opinions and beliefs, you can join us on air by making your own program and podcast. You can get more details through our website, freshfm.co.nz. This is Fresh FM.
3: Good morning, good afternoon. You're on the Deadline Report with Ben Virgin Investigates, Kira Fresh FM, Nelson City 107.2, Nelson Tasman District 104.8, Eastern Golden Bay 95.0, Blenheim 88.9, or you can try us on freshfm.net if you want to listen to us live, or you can even try us on the website, the Postman Productions, the Slick Sick Detective.com. Try that, say that five times.

0: This is Fresh FM, the station that lets you make the content. It's 9 o'clock.
1: Friday nights hit different. When the world quiets down and the city lights take over, there's a place you can go. This is Neon Nights, a late night journey through synthwave from the iconic to the underground to the sounds you didn't know you needed. Whether you're driving, winding down, or just escaping for a while, this is your soundtrack. Friday, 11 p.m. on Fresh FM. Neon Nights. Stay up late. Stay neon.
2: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
3: Fresh FM now brings you a program from one of our sister community access radio stations. If you'd like to present your own show on Fresh FM, send us an email on nelson@freshfm.net.